0: है। शुक्रिया जी।
1: हफ्ता भरी का महफल दे विच हुण मैं थोड़ी जान पछाण पंजाबी दे नवें उभर दे शायर तलविंदर शेरगिल जी नाल करवाउण जा रहे हां। तलविंदर शेरगिल जी जिला शहीद भगत सिंह नगर दी तहसील बंगा दे नेड़े वसदे पिंड गुणा चौर तो हन। बहुत वधिया शायर ने। इहदे नाल दी नाल उहनां दे इक लिखे हुए गीत पंजाब सिया नूं साडे गायक कृष्ण ही उहने गाया है, जिहड़ा इस वेले पंजाबी दे स्रोतियां दी बड़ी पसंद बनिया होया है। ते इहो जिहे वधिया रचनावां दे रचनहारे तलविंदर शेरगिल नूं असीं दुआबा रेडियो दे मंच ते निगाह जी आया कहिंदे हां।
2: ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਆਪਣੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਏਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਆਪਣੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਏਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸਦਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸਦਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੈ ਐਵੇਂ ਅਜ਼ਲ ਤੋਂ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੈ ਐਵੇਂ ਅਜ਼ਲ ਤੋਂ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ

0: किसी चला जाता है।
1: हाँ जी, हाँ
0: उस
1: जी।
0: तो बात फिर एक बार डॉक्टर बन ही गया, फिर तो मेहनत करनी
1: फिर तो
0: पैनी
1: गड्डी ली ते आ गई है,
0: फिर
1: फिर
0: तो
1: तू
0: आ
1: बने।
0: गया। उस तो बाद मतलब कहने की गल है कि किसी भी तरह नाल, इस तरह की गल्ला नाल या कोई होर किसी मोटिवेशन नाल, जे बच्चे नु आपा उस वेले सपोर्ट दे दिए, उन्हों आपा किसी तरह रीइंफोर्समेंट दे दिए, तो उसका सारा
1: जी
0: जेड़ा करियर है उस वेले शेप अप हो सकता है। तो उस वेले पेरेंट्स नु टीचर्स नु ये बहुत सोचने की लोड है कि किस तरह अपने बच्चों नु अपने विद्यार्थियों नु किस तरह इस चंगी सपोर्ट दे सकते।
1: बिल्कुल सही जी। ये तो यही एक तरह का कह लो कि क्रॉस रोड्स ने,
0: बिल्कुल
1: इन्हों के उत्ते ही सही ट्रैक पकड़न की लोड़ होंगी है। तो बड़ी वधिया गल तुसी कीती। वैसे तुसी डॉक्टर भी हो, मैं जे निजी सवाल पूछा कि तुसी डॉक्टर हो, MBBS हो, फिर तुसी ट्रैक बदलते हो, फिर तुसी सिविल सर्विस चाहते हो, ये किवें डॉक्टर बनने का ट्रैक किवें सी, ते उस तो बाद जिहड़ा टर्न लिया वो किवें जिंदगी च आया?
0: डॉक्टर बनन दी जेड़ा सुपना सीगा वो एक्चुअली इस जड़ी मैं गल कह रहा सी मेरे पेरेंट्स नहीं सी, मेरा सुपना नहीं सीगा। जस्ट दैट कि उन्होंने ग्रूम इस तरह का किया कि पढ़ाई से नॉर्मली अपना ठीक रहे, अपनी क्लास च पीछे वाली कतार च ना हो, अगली कतार च रहे। सातवीं अठवीं तक यही चलता रहा, खेडा च भी ठीक सीगा,
1: हाँ
0: खेड
1: जी, हाँ
0: कूद भी
1: जी,
0: ठीक
1: ठीक
0: लेंदे सी।
1: है
0: जिहड़ी
1: जी।
0: गल मैं आके कि अठवीं जदों एक क्रॉस पॉइंट आया कि बोर्ड के पेपरों को बड़ा हवा बनाता, साढ़े टाइम च अठवीं बोर्ड की होंगी सी
1: अठवीं
0: गेम,
1: बोर्ड दी, हाँ जी, हाँ जी,
0: कहते जी बोर्ड का पेपर है तो ये तो चंगा तुसी करना ही करना, इस
1: ये
0: तो ज़्यादा
1: तो
0: कोई वो है ही नहीं, यदा हल ही नहीं
1: हाँ
0: हैगा।
1: जी, हाँ जी,
0: अठवीं च मेहनत की उदों ही गल्लां कही गया कि जी अठवीं पास कर लो फिर तुम लैके जावे कितने, असं भी नाल
1: हाँ,
0: करांगे,
1: वाह जी
0: हो
1: वाह,
0: गई पास हो गई अठवीं संभव।
1: ठीक है जी।
0: नौवीं अच्छा एक आदत शुरू तो पवाई कि पेपर रीडिंग नहीं, न्यूज़ पेपर तुम शुरू तो पढ़ते रहो, बुक्स वगैरह जीके की बुक्स हैगियाँ या होर कोई कंप्लीट
1: अच्छा
0: लिटरेचर की
1: अच्छा
0: बुक्स
1: जी,
0: हैगियाँ। ये हमेशा आदत साढ़े घर से सी कि मंथली एक मैगजीन साढ़े को आती सी, पेपर साढ़े को तीन लैंग्वेज के आते
1: ये
0: आते
1: प्लस
0: सी,
1: पॉइंट्स
0: ये प्लस पॉइंट,
1: बिल्कुल।
0: ये ग्रूमिंग की जी मैं गल आख रहा
1: हाँ जी, हाँ
0: सी
1: जी,
0: कि
1: ठीक है
0: तीन तीन लैंग्वेज के पेपर साढ़े घर से आते सी, हिंदी
1: जी।
0: पंजाबी इंग्लिश तीन शुरू तो ही बचपन तो ही पढ़ते सी। ते फिर 9th 10th होया तो बायो च इंटरेस्ट चला गया कि चलो ठीक है बायो पढ़ के देख लेंगे। 10th दे विच जो क्लियर होया तो आई हैड प्रिपेयर्ड माई माइंड कि बायो लैनी है कि डॉक्टर जरा है बनना है, किसी ने थोपिया नहीं,
1: अच्छा,
0: सपना
1: ठीक है, ठीक
0: पेरेंट्स
1: है।
0: का सीगा पर उदों थोपिया नहीं गया कि तुसी बनना है, उदों तक माइंड
1: आप
0: बन
1: ही
0: गया
1: उसी सोच आपने
0: बिल्कुल
1: इन्हों अपना सपना बना लिया। ठीक
0: बिल्कुल कि बनना हैगा, मेडिकल ले
1: जी
0: ली,
1: जी जी
0: नाल थोड़ा मैथ से इंटरेस्ट सी, नॉन मेडिकल वैसे ऑप्शनल रख ली
1: और क्या
0: उदों
1: बता, मतलब तुसी ट्रैक छड़िया कोई नहीं, दोनों भी नाल ही रखिया।
0: उन्होंने दिनों जो जेडे मेरे फ्रेंड सिगे वो NDA का पेपर देने जा रहे थे,
1: हाँ
0: तो
1: जी, हाँ
0: मैं कहा
1: जी,
0: कि चलो पता नहीं डॉक्टर बनागे नहीं बनागे,
1: ठीक, हाँ जी,
0: पेपर दे चुके थे कि NDA का पेपर भी देने चले गए।
1: हाँ जी,
0: रब दे मेहर से दोवें जेडे हैं उदा प्रीलिम्स क्लियर हो गया, उदा डॉक्टरी का क्लियर हो गया।
1: क्या
0: उस
1: बात
0: वेले मतलब चीज़ा वही हैं कि जरूरी नहीं कि तुसी दोवें
1: है,
0: एक साथ
1: सही
0: टेकअप
1: ट्रैक पे
0: करो,
1: जा रहे थे तुसी।
0: बट तुसी जड़ा बच्चा उस स्टेज से होंगे 11वीं 12वीं दे सामने ये ऑप्शंस होंगे ने बैंकिंग दे,
1: जी,
0: जिस किसी लगता है कि बैंकिंग से जाना है वो कॉमर्स के थ्रू अपनी तैयारी उस तरह की कर सकता है, किसी लगता है CA बनना है, मैं
1: सारा
0: किसी लगता है
1: जोड़ा
0: इंजीनियरिंग करना है,
1: बिल्कुल।
0: दैट इज द स्टेज जो तो 9th 10th दे लिए अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हो, प्लस वन
1: बिल्कुल
0: दे टेक ऑफ करते हो। उस तो
1: जी
0: बाद
1: जी
0: भावें CA बनो, इंजीनियर बनो,
1: हाँ
0: टीचर
1: जी, हाँ जी,
0: बनो, अपने डॉक्टर बनो, आर्मी से जाओ, पुलिस से जाओ, वो तुहाडी जिहड़ी है उस वेले तुहाडा डिसीजन लेना जरूरी होंदा। ते दोनों जदों मेरे क्लियर हो गए ते बेटर वॉज कि चलो ठीक सपना उहदे विच जाना सीगा
1: हाँ जी, हाँ
0: मेडिकल दे
1: जी,
0: विच, ते
1: बिल्कुल
0: मेडिकल सब्जेक्ट ले लिया पहले
1: बिल्कुल
0: अटैम्प्ट दे
1: बिल्कुल,
0: विच। और सिविल सर्विसिस्ट इस करके बनिया क्योंकि जिवें मैं दस्या सी कि GK शुरू तो अच्छी सीगी,
1: हाँ जी,
0: पेपर रीडिंग बहुत चंगी एक आदत जो बच्चे च पै सकती होवे।
1: हाँ जी,
0: और मैं अपना जो सिविल सर्विस का करियर मैं टोटली मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मैं आफ्टर ग्रेजुएशन में सिविल सर्विस की तैयारी की थी, वह जरा बेस सेगा थ्रू न्यूज़पेपर रीडिंग मेरा बचपन तो
1: शुरू
0: ही
1: तो बनाया
0: तैयार
1: है
0: हो
1: जी,
0: चुका सेगा,
1: बिल्कुल।
0: एंड उस आदत के कारण जरा से सिविल सर्विस आने का डिसीजन होया कि चलो ट्राई कर सकते हैं क्योंकि बेस
1: जी जी
0: चंगा
1: जी
0: बनाया
1: जी
0: हुआ सेगा।
1: बिल्कुल ठीक है,
0: तो किसी बच्चे ने अगर सिविल सर्विस की तैयारी करनी है तो एक बहुत ही बेसिक स्टेप जरा प्रिलिमिनरी स्टेप मैं आखाँगा कि पेपर रीडिंग की आदत जो बाद च भी बन जाए, इवन व्हेन यू आर इन कॉलेज उदों भी बन जाए, तो ये बहुत ही चंगी आदत है।
1: जी
0: तुसी
1: जी
0: आस
1: जी
0: पास की अपनी सराउंडिंग्स नाल देश दुनिया की खबरों तो भी तुसी रहिंदे हो,
1: अपडेटेड रहना है
0: अपडेटेड रहिंदे हो, तुसी अपने शहर की खबरों तो भी अपडेटेड रहिंदे हो, तुहाडे
1: जी
0: शहर च
1: जी
0: की हो रहा है, तुहाडी कंट्री च की हो रहा है, दुनिया च की हो रहा है,
1: बिल्कुल,
0: एंड सिविल सर्विस जाओ या ना जाओ बट एक इन्फॉर्म सिटीजन जरा तुसी उदे विच बन सकते हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, वो पहली शर्त है, वो तो चाहिए चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਸਿਵਲ

0: ने दुआपा रेडियो ते हर सोमवार तो शुक्रवार तक भारतीय समय मुताबिक रात 8 बजे तुसी अपनी रलत कर सकते हो फोन करके ते सुनेहे भेज के नंबर है 8306028 9 1 8 8 3 6 0 8 2 4 9 1 8। प्रोग्राम दिल दियां गल्लां तुहाडी अपनी दोस्त सीमा अग्रवाल दे नाल। अपने दुआपा रेडियो ते
1: जिंदगी नामा हाल ए दुनिया यू आर लिसनिंग नाउ आवर ओन दुआपा रेडियो वेलकम ऑल लाइव ऑन फिनलैंड टाइम मंडे टू फ्राइडे 11 PM इंडियन टाइम ट्यूसडे टू सैटरडे 2:30 AM रिपीट बाय इंडियन टाइम डे टाइम 12 o'clock। Studio number +358 44 976 1962. Join us by WhatsApp call and message and call us on Skype, Doapa Radio PTI. Please like us and follow us on Facebook and download Doapa Radio iOS and Android app. Zindiginama, Hal e Dunia.

0: ద్వాపర రేడియో.
1: कविते रसोई नु बुरा ना बोलिए फड़ लिये तकड़ी ता पूरा तोलिए जिन्ना चिर घरे ना ले आइए डोले नू के बह जा कर छड़िए बचोले नू के बह जा कर छड़िए बचोले नू। सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना गुरजीत जीती ते तुसी सुन रहे हो दुआबा रेडियो, तुहाडी अपनी आवाज।
2: दिल दियां गल्लां, तू मेरे दर ते आवे ते मैं तेरे संग रला, जो हवा दे बुल्ले जो पानी दिया छल्ला ते रल के बइए वेड़े करिए दिल दिया गल्ला। हां जी, प्रोग्राम दिल दिया गल्ला तुहाडे अपने दुआबा रेडियो ते हर सोमवार तो शुक्रवार तक भारतीय समय मुताबिक रात 8 बजे तुसी अपनी रलत कर सकते हो फोन करके ते सुनेहे भेज के। नंबर है 8306028 9 1 8 8 3 6 0 8 2 4 9 1 8। प्रोग्राम दिल दिया गल्ला तुहाडी अपनी दोस्त सीमा ग्रेवाल दे नाल।
3: जिंदगी नामा हाले दुनिया, यू आर लिसनिंग नाउ आवर ओन द्वापर रेडियो। वेलकम ऑल, लाइव ऑन फिनलैंड टाइम मंडे टू फ्राइडे 11 PM, इंडियन टाइम ट्यूसडे टू सैटरडे 2:30 AM, रिपीट बाय इंडियन टाइम डे टाइम 12 o'clock। Studio number +358449761962. Join us by WhatsApp call and message and

मैं पहला प्यार तेरा, क्या किस्मत मेरी ये, तू ही पहला प्यार मेरा, क्या किस्मत तेरी ये, एक पल दी मोह

वेखो तुसी साका जल्ले आदे बागदा होया सी जुल्मे उत्थे खूनी रागदा ऊधम जहे जोदे उड़वा।

मैनू जानी ना तिला बौकर बन के हूं जदेऊं जे आकड़ छड़ी ना अपनी तैनू नक्शे तो पूंज देऊं जे आकड़ छड़ी ना अपनी तैनू नक्शे तो पूंज देऊं मैं पखियां।

तेरा हुण तख्त हिला देना जेने तू तख्त ते चढ़ बैठे ओ कुरनावे लबांगे जिस दे विच जा वड़ बैठे मैं।

असां कदे जोश विच आके अपना होश नहीं खोया, सी अग अंदर बाल दे आ, कदे आक्रोश नहीं खोया। हुण होणै जो तू वेखी मैं ता घमसान दा।

मारने लगा के पंजाब देख ले, कई कई दिन बेहिसाब देख ले। तारने लगा के पंजाब देख ले, कई कई दिन बेहिसाब देख।